वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही शान्ति स्कूल अगाडि मोबाइल 98570 59934 लाइन्स चोक नारायणगढ चितवन मोबाइल 98550 5094

0: তো শান্তি কমান লুম্বিনি, শান্তি কো আবাস রেডিও লুম্বিনি।
1: यसो बिहे पार्टीमा हेर्यो, सबैका बुढी झपक्क गहनामा सजिएर आउने। मेरी बुढीलाई पनि यसपालि एक सरो

नमस्कार, रेडियो लुम्बिनी साँझ 7 बजे हालखबर में दिवाकर पंक्ति को स्वागत छ। यो हालखबर एफएम 96.8 मेगाहर्ज, अनलाइन www.radiolumbini.org, विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन र रेडियो लुम्बिनी को फेसबुक पेज बाट प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ। हालखबर को शुरू में मुख्य खबर शीर्षक। भोलि आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट प्रस्तुत हुने, दुवै सदन को संयुक्त बैठक को तैयारी पूरा। नेपाली कांग्रेसले माग्यो मानवाधिकार आयोग को प्रतिवेदन बारे सरकार को धारणा, कार्की आयोग का अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न माग। नया सहकारी दर्ता र शाखा विस्तार रोक्न सरकारी प्रतिवेदन को सिफारिश, दर्ता गर्दा कार्यक्षेत्र बढीमा एउटा पालिका मात्र हुनुपर्ने। निर्वाचन स्थल अपाङ्ग मैत्री बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सरकारवालाको सुझाव। मुस्लिम समुदायको महान पर्व ईद उल अजहा बकरीद मनाइयो। सुस्त बन्यो मनसूनको गति, नेपाल भित्री निमित्त अनिश्चित। सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न व्यापारी व्यवसायद्वारा ध्यानाकर्षण। रविन्द्र घाट रोड टू यूएफसी को सेमी फाइनलमा र एसियाली खेलकुद छनौटमा इन्डोनेसियालाई हराउँदै नेपाल सेमी फाइनलमा।